Optical. Remember, Jodhpur Gate Plaza में, Brampton में, Alpha Optical, any age, any stage. जी हाँ, आपकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए. आपको को चेक करवाने के लिए वहीं पे 905-450 का इंतजार पर कॉल कीजिए 9054567733. Alpha Optical, your vision is your business.

यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता का सुंदर स्टैचू ना भूले नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।

शंकुल देवीन मूर्तते महादेव प्रियंकारी बालनम हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता प्राही मम शरणागतम जितद्री मंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवम।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदर।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं, हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर, 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे, कहां पे, योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444, 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा, 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर इस फेस्टिव सीजन में लेके आना चाहते हो, बढ़िया सा टीवी चाहिए आपको, बढ़िया बढ़िया गैजेट किचन में चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देख सकते हो, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अब अगर आपने मूव होना है, तो एच के मूवर्स आपके लिए सारे टोरंटो भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं, और साथ साथ ही आपको आपके जो सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-4164-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो। जी हाँ, तो एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आपको आपने किसी किस्म का कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो अब आपके लिए बहुत वहाँ लंदन में वो रोड पे पहुँच खुल चुके हैं। तो आपने किसी तरह की भी आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और इसलिए फिर आपने अगर किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो फिर आपके लिए मौजूद है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, तो आप के लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, आपके लिए करवा चौथ आने वाली है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो लेट्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये जो पुराना सा गाना है, पुराने वाले गाने जो है ना, उनका जो संगीत है वो एकदम आपके लिए मनमोहक है। तो लीजिए सुनिए, ये भी बड़ा सा प्यारा सा गीत है, जितेंद्र है इसमें, बबीता है इसमें।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पार्टी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हम 3 लोकेशन तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जो लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अपने कमेंट्स भेजते हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का चाहिए तो आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी जो फेस्टिवल सीजन स्पेशल हैं वो देख लीजिए। फिर आपको अगर अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने ऑर्डर करना है तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। बढ़िया टीवी आपको चाहिए, बढ़िया किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का बहुत बढ़िया प्राइस पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 0579-0045 पे कॉल कीजिए। तो अब आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में खुल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, तो आप सुनिएगा जरूर, बहुत ही बढ़िया है, तो आपको जरूर पसंद भी आएगा उम्मीद रखती हूँ। तो आपका जो अभी लॉन्ग वीकेंड है, थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड, उसके लिए आप सभी को लॉन्ग वीकेंड का बहुत बहुत हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को बहुत सारी हैप्पी थैंक्स गिविंग, और हमें जरूर थैंक्सफुल होना है ऊपर वाले का जो भी हमें मिलता है, तो इस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ भी हमें जिंदगी में मिला है हम उसके लिए सारे यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें दिए हैं, हम उसके लिए भी यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड थोड़ी ठंड भी हो गई है तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रात को भी हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे बहुत प्यारे प्यारे गीत लेकर के, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं, तो उनको आप कॉल कर सकते हैं 416-524-4416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको आपने खाना ऑर्डर करना है या लाइव कुकिंग करवानी है तो ये सारा कुछ आपके लिए जो है वो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट पे और ब्रिटानिया पे, और लाइव कुकिंग आपने करवानी है तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने बढ़िया फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपको वो काम करके देते हैं। तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कॉल कर लीजिए, उनके वेबसाइट पे जाइए topchoiceelectronics.com। तो आप किसी तरह की भी आपने ऑर्डर बुक करना है फेस्टिव सीजन के लिए, बढ़िया टीवी लेना है अपने घर में, फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए 905-799-0045 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। ये भी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है पर बहुत ही रोमांटिक सा है।

0: to say thousands of legal fees, so we can invest back into our small
1: business. I do. रजिस्टर वाशर ड्रायर लेना है तो आप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जाइएगा और आपको बहुत बढ़िया प्राइसेस मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। तो गाना आपका अभी आ रहा है।

0: आंखों में कुमार जादू नगरी आया है कोई जादूगर।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है गायत्री सर में। तो हैप्पी थैंक्सगिविंग टू ऑल ऑफ यू, और खूब एंजॉय कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाइएगा, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में जाइएगा। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ, रात के वो भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे तो 10 से 11 बजे। तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सवादा भला। हैव ए सेफ लॉन्ग वीकेंड।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

हंसा छोड़ न जाए। प्रेम भगत कर सहज समाए, सरबर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर।

गोर मुख भगत सहज बिचारी, भगत बच्छल भै काटन हारे। होम मार मिले पग तारे, आनक जतन कर काल संताए। मरण लिखाए मंडल मह आए,

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पैराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन, ब्रैम्पटन, सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 6,29,990 डॉलर तो ते नाल 1,30,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस, HST रीबेट्स अते बहुत वडियां सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com, paradisedevelopments.com.

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत ना कोई करने हारा कर दापे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हां तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते ते तुहाडा ते साडा साथ इंजी बनिया रहेगा सवेरे 10 तो 1 बजे तक ते असीं बहुत वधिया वधिया गल्लां करांगे तुहाडे नाल। एंड अज असीं बहुत वधिया टॉपिक्स लैके आ रहे हां और तुसीं बस शो सुनदे रहो। अज मौसम बहुत सोहणा आ ते साडे सारे सोहणे सोहणे लिसनर्स कित्थे हैगे आ ते कित्थों कित्थों सानू सुन रहे हो, एक बार हाजरी लवानी तो बनती है। सो तुसी सारे ने कॉल करना है, स्टूडियो का एको एक नंबर हैगा है 905-673-3337 ते कॉल करके तुसी अपनी हाजरी लवाओ ते सानू दसो की तुहानू साडी आवाज़ वधिया आ रही है।

0: ऑन एयर हो अपना मैसेज डिलीवर करूंगे सुल्तान जी फ्रॉम ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
1: थैंक यू वेरी मच जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस का मैसेज दे रहे हैं। खास तौर पर जेडे कस्टमर 100 इंच सोनी टीवी लेना चाहते हैं, क्योंकि शौकीन कस्टमर का शौक यह होंगे कि जे बिग स्क्रीन टीवी नवी तो नवी स्क्रीन नवी तो नवी टेक्नोलॉजी जी है वह घर लेके जाई जाए। सो अगर तुम चाहते हो कि वाकई पहली बारी लॉन्च किया गया 100 इंच का टीवी थोड़े तो घर पहली डिलीवरी पहुंचे, तो फिर तुम ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस तो $1500 सेव कर सकते हो, क्योंकि $4500 वाला 100 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल सिर्फ तो सिर्फ $2999 का असी दे रहे हैं। तो $2999 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी, इन स्टॉक है, अज लवोगे तो 48 आवर च डिलीवरी स्कैजुअल हो जाएगी। 905-450-2828 नंबर है। जेडे कस्टमर 85 इंच न्यू टेक्नोलॉजी यानी सैमसंग का मिनी LED लेना चाहते 85 इंच $1800 वाला सिर्फ $1199 का गारंटिड प्राइस मैच तुहानू दित्ती जा रही है, तो 6 महीने च तुसी $1199 पे कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 75 इंच सैमसंग $1100 वाला $799 च, 65 इंच सिर्फ $599 का, 55 इंच सिर्फ $399 का मिलेगा। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे जी, 905-450-2828 नंबर है, 905-450-2828। जिथे साडे टीवी सैक्शन च तुसी 600 तो लाके $800 सेव कर रहे हो, ते 100 इंच दी नवी टेक्नोलॉजी दे उपर $1500 सेव कर रहे हो, सोनी गूगल फीचर दे नाल 100 इंच लॉन्च किया गया, 120 Hz है गेमिंग मोड दे नाल, जिहड़ा कि 5.1 चैनल की इनपुट कनैक्ट की गई है, बिकॉज ऑफ PS5 दे नाल इहदी रेजोल्यूशन मैच की गई है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी दे नाल, $2999 च ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से अवेलेबल है जी, 905-450-2828। लॉन्ड्री सैक्शन च साडे कोल जे स्टैकेबल वाशर एंड ड्रायर चाहिए, वाशर थले ड्रायर उपर स्टैक हो जाएगा, $2200 वाला $1499 च लैके $700 तुसी कल्ले वाशर एंड ड्रायर से सेव कर लेना। जे तुसी फ्रिज लेना जी, ते तुहानू फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3-पीस किचन बंडल $2000 दी सेविंग दे नाल मिलना है, क्योंकि $5000 वाला बंडल पैकेज $2999 च है। ते जे बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वालवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर, बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज चाहिए, ते तुहानू 40% दा 40% डिस्काउंट है, अपलायंसेस इंडस्ट्री च मैक्सिमम 40% डिस्काउंट है जिहड़ा असीं अपने कस्टमर नू लैके दे रहे हैं। हाई वॉल्यूम डीलर होने करके डिस्काउंट तुहानू बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन तो मिल रहा, $12000 वाला पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन सिर्फ और सिर्फ $6900 च ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से मिलेगा। साडा मैसेज जरूर पास ऑन करना अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रैलेटिव नू, ताकि वह भी बिग सेविंग्स कर सकन जी। होम अपलायंसेस लॉन्ड्री एंड टीवी सैक्शन च ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com साडी वैबसाइट है। कला वाशर चाहिए हो 599 च मिल जाएगा, कला डिशवाशर लेना 499 का मिल जाएगा, सिंगल पीस स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए 799 का स्टेनलैस स्टील मिल जाएगा, 6 महीने नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लैन के नाल नाल फ्री डिलीवरी भी है, 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: थैंक यू सो मच। और तुसी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते पहुंच रहे हो, नाल नाल मैं दानिश में नाल, दानिश की हाल चाल ने?
2: ਸਸਿਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ,
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਮਿਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾ, ਤੇ ਚੋਪੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਾਸ?
2: ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਨੀਸਾਨ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ

0: इक्विटी टेकआउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
1: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
0: या कॉल करो 647-294-5503।
1: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530, nardevsiddhu.com।
2: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम का सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।

0: Listen live Vatno Do Radio with Sukhi Nijjar. The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ। तो सुनते रहे रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा। सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह कीमती, गोल्डन मोमेंट्स की मिठास के साथ। The views, ideas and opinions expressed in the program

ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800, 416-526-6800।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.
1: Use multi-factor authentication.
0: Once again, welcome to the program. Swagat hai tuhanu sab da program de vich. Galbaat karan layi number again 416-910-6000. Is number te galbaat kiti ja sakdi hai. Chalo ek khoobsurat jehe geet di taraf tuhanu leke chalde haan. Tuhadi farmaish, tuhadi nazar, tusi geet sunna chaha hai. Aur enjoy karde hai is khoobsurat se geet no. Chandarmaa di चंद की जेकर असी गल करिए बहुत खूबसूरत है चंद्रमा. और जदों स्पेशली पूर्णमाशी होंदी है तो फुल मून जदों होंदा है तो उदों उस दियां वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदियां ने. एंड इट रियली अफेक्ट्स आवर लाइफ क्योंकि चंद्रमा नूं एस्ट्रोलॉजिकली मन दे नाल जोड़िया जाता है. मन दे बारे असी सुनिया ही है कि मन जीते जग जीत. मतलब जे तुसी अपने मन नूं जीत लिया तो समझो तुसी दुनिया जीत सकते हो. पर प्रॉब्लम यही है कि मन नूं जीतना सब तो मुश्किल काम है. लेकिन जेकर तुसी कोशिश करते हो, तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग रखना चाहते हो तो पानी ज़्यादा पिया करो, पानी दे नज़दीक रहा करो, चांदी ज़्यादा पहनो, तुसी अपने मन नूं स्ट्रोंग कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ हार्ड. कई बार असी जिंदगी च रूटीन दे विच चलदे रहने हैं बट वी डोंट थिंक कि जिंदगी च बहुत सारिया परेशानियां आंदियां, बहुत सारिया मुश्किल आंदियां कि कोई रस्ता नज़र नहीं आंदा. तो इहदा मतलब है किसी की कही हुई गल, छोटी जिही गल सानू पिंच कर जांदी है. इहदा मतलब है कि साडे इमोशंस इमबैलेंस हैं. मैं लास्ट वीक दस्या सी कि अपने इमोशंस नूं बैलेंस करन लई या अपने इमोशंस नूं स्पिरिट नूं हाई करन लई या अपने मन नूं मजबूत करन लई तुसीं एवरी मंडे जेकर चांदी का एक सिक्का अपने पिल्लो के नीचे रख के सोंदे हो तो जिहड़ी चांदी की एनर्जी है वह तुहाडे मन नाल कनैक्ट होकर तुहाडे माइंड नूं स्ट्रोंग कर सकती है. इस टाइम जो फुल मून हुंदा है तो उस टाइम तुसी पानी ज़्यादा पियो. अजकल तो बहुत ट्रेंडी हो गया है मून वाटर बनाना. चंद्रमा की रोशनी विच तुसी पानी रख दो और सारी रात वह पानी चार्ज हुंदा रहिंदा है. दैन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. उहदे नाल भी तुहाडा मन जिहड़ा स्ट्रोंग हुंदा है. फिर पुराने जमाने विच तुहानूं याद होएगा कि साडे नानियां दादियां दरखत के उपर चंद्रमा पूर्णमाशी वाले दिन, फुल मून वाले दिन खीर बना के टंग देंदे सी ताकि चंद्रमा की पूरी रोशनी उस खीर के अंदर आ जाए और उस तो बाद उस सारी फैमिली नूं खीर दित्ती जांदी सी. सो यह भी एक रिचुअल कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो या फिर अपने मन नूं स्ट्रोंग करन दा एक तरीका कर सकते हो. छोटे छोटे चीज़ां ने बट विदाउट एनी कॉस्ट असी घर दे विच ही इन्हां चीज़ां नूं यूज़ विच लिया के अपनी जिंदगी नूं बेहतर बना सकते हैं, अपने मन नूं स्ट्रोंग बना सकते हैं. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहानूं मिल सकती है रेडियो गोल्ड दे किसी भी प्लेटफॉर्म दे तुसी जाओगे, यू विल गैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अपनी जिंदगी नूं ते अपने मन नूं किदां बेहतर बनाया जा सकता है. एक खूबसूरत जिहा गीत तुहाडी नज़र. इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. कहिंदे हैं कि चांद चांद भी क्या हसी सितम ठाता है, चांद भी क्या हंसी सितम ठाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और प्रोग्राम एसआरडी सुनते रहो 5:30 से 5 to 6 बजे तक रेडियो गोल्ड. आफ्टर द शो नंबर इज 416-910-6000. जस्ट बी रेडी. आप थोड़ी जी एस्ट्रोलॉजिकली गल भी करांगे कि जेकर थोड़े हाथ में दिल है अलग अलग जगह से तो वो की रीजन हो सकते हैं एंड हाउ वी कैन थिंक बेटर ऑन दैट. और मनीबंदी भी गल करांगे जिहड़ी

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बीबी गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 jobs completed, 16 installers team, cover across Ontario, more than 9% in home stars last many years. Windows and Door manufacturer, not dealers. Yash Windows and Doors, 416-732-3600 or 416-674-7770. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ there is no mediator, manufacturer hai aur direct manufacturer ton tonu very good price and good quality de yash windows and doors jo par ja ke tusi information le sakde ho। yash ji swagat hai tuhanu।
1: thank you very much, aapko sare shrotao ko namaskar karta hu
0: ji, welcome। aur thodi si information de please dharam ji, yash windows and doors ke bare mein।
1: yash windows and door 2012 se window and door ki manufacturing karti hai, toronto based hamari factory hai और अक्रॉस ओंटारियो में 34 इंस्टॉलर्स के साथ हम विंडो डोर जो बनाते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। विंटर ज्यादा दूर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में विंडो डोर बदलने की जरूरत है तो अभी फास्टेस्ट 4.5 वीक में हम जॉब कंप्लीट कर देते हैं अक्रॉस ओंटारियो। सो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट
0: 416-732-3600। यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर है, इस नंबर ते जाके तुसी इन्फॉर्मेशन कॉल करके एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं और डायरेक्ट तुसी इन्हां दे नाल डील करनी है, विचकार कोई मीडिएटर नहीं है, तो वेरी गुड प्राइस ऊपर तो गुड क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। ओके यश जी, आप लोकल जीटीए में ही सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ जीटीए भी अगर किसी ने करवाना हो तो?
1: सर्विस देते हैं, अभी कैलगरी शुरू हो चुकी है, वैंकूवर में शिपमेंट जा रही है, तो मोस्टली नेशन वाइड अब खुल रहा है, लेकिन अक्रॉस ओंटारियो, पूरा ओंटारियो हमने कवर कर चुके हैं। हमारे दो शोरूम्स हैं, दो फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे ओंटारियो में हम सर्व करते हैं।
0: और इस टोरंटो में जीटीए में अपनी लोकेशन बता दें यश जी।
1: जी, हमारी दो लोकेशन है, 185 कार्लिंग व्यू ड्राइव यूनिट 6 इटोबिको, वहाँ हमारी फैक्ट्री है। अगर शोरूम में जाना है तो 8917 दगोर रोड, सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी के एग्जैक्ट सामने ही यश विंडोज का शोरूम है।
0: बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त। 416-732-3600 ब्रैम्पटन वासियों, तुहाडे लई इट्स अ गुड न्यूज और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुहानू टोरंटो ऑल द वे जान दी जरूरत नहीं है। ब्रैम्पटन ईस्ट दे विच तुहानू ये सर्विसेज, एक्चुअली ब्रैम्पटन ਯੈਸ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਰੋਡ, ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ 416-732-3600 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜੀ ਟੀ ਏ, ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, 732-3600। ਯਸ਼ ਜੀ, ਧਰਮ ਜੀ, ਸੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਵਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲਟ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशन टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी ईयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। शनिवार दी शाम दी महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून कर चुके हो जी थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारां नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी हां एंड खुशामदीद एंड स्वागतम।

0: हाँ हरमन कौरी,
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली होई लग गई।
0: हाँ
1: तू एवे कर, जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे,
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: बैग चाहिदा, दस्ताने चाहिदे, कोटी। अच्छा मेरी गल सुनो, ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर?
1: भाई साहब जो बच्चे की मां ने ही करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है?
0: यार किद्दा दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरोगे उत्थे?
1: हेलो
0: नाले
1: एक मिनट, हेलो
0: एक्सक्यूज मी, जेड़ा ओ दा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया? चंगा लगा नी मुक दी गल है, जे अगले मेरे को काम करा कल नू भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले का जवाक पाड़ दे, बाद अगले पैसे ना देन, फिर कौन जिम्मेवार?
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकता है, बाकी गल्लां दी गल्ला।
2: रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।

0: मेरी गर्लफ्रेंड को छाट दी।
1: ओया पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनु मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने दी बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।
2: रोदाली
3: फिल्म रोन आली करना
2: वैसे मतलब काइंड ऑफ इदा दा ही।
3: अच्छा जी।
2: एक्चुअली मतलब कि ताइवान दे विच ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है। उदे च की है जेडे प्रोफेशनल मूर्नर्स हुंदे ने, यानी कि जो लोग इदा खीरने पाउंदे ने उनां नूं लेके जांदे ने लोग। जदों किसी दा इदा दी कोई हैपनिंग हो जांदी है ना, उत्थे जाके फिर जेडे प्रोफेशनल लोग ने ओह रोक के दिखाउंदे ने कि इदा रोना चाहीदा।
3: ओए होए
2: होए, ए काम कर ला तू।
3: मतलब कहण दे
2: हां
3: कि भाई साहब बंदा सवेर तो लेके शाम तक कदी किसे दे भापे ली कदी किसे दे बाबे ली हां डाडा मारद रवे है। मतलब इथे आके डिगे है तू वेलो भाई है कोई, मतलब अजकल तुम लगता है कोई ईमानदारी का जमाना है भलाई का जमाना नजर आता तुम मेरी तो गल बीबी काम है तेन फिट बहना तू कर ट्राई नाले इतना सिर जा सुट के लगी रही अगले पता लगना नाले रोंदी है हसदी है तू तो मैं कोई प्रोफेशन नहीं दसा ना मैं लब ले Human scarecrow.
2: ए तो तेरी personality दे नाल भी जानदा है।
3: क्यों?
2: बिल्कुल इदा ही हुंदा scarecrow. Crow तेनू देख के तो वैसे ही बेचारे हार्ट फेल हो जावे भी है। ए की है?
3: कुछ भी है। ਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
2: ਬਿਲਕੁਲ
3: ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ
2: ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਮਤਲਬ।
3: ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ।
2: ਅੱਛਾ,
3: ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਚਿੜੀ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪੇ ਉਹ ਦੋ ਘਰਾ
2: Hello?
4: Hi, this is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff.